0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

ज्ञानी ज्ञान सिंह जरा दो रासी पढ़ते हैं। अरदास तो बाद आ गया पई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। जिड़ा सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। जां का हृदय शुद्ध है खोज शब्द मिले। इत्थे जड़ा भाई प्रहलाद सिंह ने जड़ा इत्थे दौरा वरत्या उन्हें कहा गुरु पंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। जिते पहले वो कह रहे हैं ना कि गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, क्योंकि वो आत्मा की गल कर रहे हैं गुरु साहिबान की। दस गुरु साहिब दी साहिबान की आत्मक जोत की, इस नूं चेंज किया होया है ज्ञानी ज्ञान सिंह ने गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। उत्थे गुरु पंथ जी मान्यो, उत्थे असीं जाग का ओ उत्थे कहिंदे खोज इन्हीं मेले। सिखां ने आप अपने जिहड़े शंके ने निवारने ने आप बैठ के नजिठणे ने। सो एक जो फर्क है, पर बेसिक जिहड़ा कॉन्सैप्ट है आ गया भाई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिख उनको हुक्म है गुरु मान्यो। उस वक्त तो आज तक का जड़ा सिख है इसमें गुरु ही मान रहे हैं। और एक फिर गुरु ग्रंथ साहब दे विच जड़ा शब्द गुरु का कंसेप्ट है, जिस तरह की आप पहला क्या गुरु नानक पातशाह कहते हैं पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तो चेला। इस तो अलावा पट ज्ञानत जी ओ इसका जिक्र कर रहे ने, भगत जोग को चेतवार हर जनक उपायो, शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसाए। गुरु ग्रंथ साहब दे विच और गुआ भी है गया जिस वेले गुरु साहब ने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का जड़ा जड़ी लिखावट है जो उस संग्रह कंप्लीट किया तो फिर वह प्रकाश किया वो मौजूद स, तो गुरु ग्रंथ साहब के विच भी उन्होंने यह हवाला जड़ा है मौजूद है। और आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि गुरु जड़ा गुरबाणी जी है, क्योंकि आप भी जिक्र किए कि इसका माध्यम की है। एक जिक्र आपां कीता सी कि अखरां द्वारा इस नूं बयान कीता गया, अखर ही संचालन करते ने। दूसरा जदों आपां सुनन दी गल करते अखरां दा जिक्र आपां कॉग्निटिव रेवल्यूशन तो लैके ह्यूमन सैपीन दा अज तक दा जिहड़ा जिस तरह अज संचार सब आपां दा तुहाडे नाल गल कर रहे आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है, ये भी एक माध्यम है। कित्थे चित्रकला तो किथे साइन लैंग्वेज तो माध्यम बनता बनता अज जिहड़ा है वो जिहड़ियां तरंगा ने वाइब्रेशन्स ने वो इंसानी, क्योंकि बाकी स्पेशीज दे विच कई तरह के माध्यम ने, इंसानी समाज दे विच या इंसानियत दे विच सब तो जिहड़ा लेटेस्ट वही तरंगा वाला है। तो यह आवाज जिहड़ा है माध्यम जिहड़ा है केवल यह नहीं है कि एक कोने तो मकर के दूजे कोने तक आवाज मारी या 50 गज तो या 60 गज तो जिस तरह पहला होंदा सी। उही मैं जदों जिक्र किया कि जे स्पेस च होवो तो एक फुट ते भी तुसी आवाज नहीं मार सकते जब दोनों के कना दे विच वो यंत्र लगे ना होण, क्योंकि उत्थे स्पेस उत्थे एटमोसफेयर नहीं है, उत्थे वातावरण नहीं है, वह कैरी ही नहीं होंदी आवाज नूं ट्रैवल करने वास्ते, रोशनी नूं ट्रैवल करने वास्ते किसी माध्यम की लोड़ नहीं है। तो सगों जिथे कोई माध्यम नहीं है उत्थे ज्यादा फास्ट चलती है, जिस तरह के 300,000 किलोमीटर पर सैकेंड। पर जिहड़ी आवाज है इस नूं ट्रैवल वास्ते भी माध्यम चाहिए। पर देखते हैं ना कई बार जदों बदलों की जिहड़ी जदों आपां देखते हैं बदल गरजदे ने जिहड़ी उस तो कुछ रोशनी कट

सेवा करके बर मिलिया विधि चंद छीना गुरु का छीना। सो इस करके गुरमुख प्यारे जिहड़ी संगत है वह मनुख नू तार दिंदी आ, ते गुरमुख प्यारो संगत जिहड़ी आ वह मनुख नू डोब दिंदी आ। बाबा कबीर साहब जी का बचन आउंदा, कबीर मारी मरो कुसंग की, केले नैकट जो बेर ओह झूला ओह चीरी आए, साकत संग ना हेर। सो इस करके गुरमुख प्यारो माड़ी संगत तो बच के गुरु की संगत करिए। सतगुरु जी कहिंदे जे रब की प्राप्ति हुंदी आ तां ओ संगत दे विचो हुंदी आ। संगत दे विचो ओ आउंदे ने जिन्हां दे मत्थे दे भाग वड्डे हुंदे ने। सतगुरु जी कहिंदे सत संगत दे विच आ करके मत्थे दे भाग वड्डे हो जांदे ने। सत संगत मिल भज राम, बड हो भाग मथाम, उन्हां दे मत्थे दे भाग वड्डे हो जांदे ने। गुरु साहब जी दे संगत प्रति बचन भी हने, खोजत खोजत सुनिया है सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोए। सत संगत तो बिना गुरमुख प्यारो जीव दा पार उतारा नहीं हुंदा। सो इस करके आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती आ, अज दा सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो आए हुए श्री मुख वाक की कथा जिहड़ी आ उहनू आरंभ करिए। आरंभ करन तो पहला मैं एक बेनती कर देवां, अज धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक उन्हां दे सपुत्र बाबा अटल राय जी अज वाले दिन वह सचखंड नूं गए सन। उन्हां दा ज्योति जोत समाउण दा अज दिहाड़ा है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच उन्हां दा नौ मंजिला स्थान भी बनिया होया है। बाबा अटल पक्कियां पकाइयां कल, जिहड़ा भी सिख सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर साहब दर्शन करन वास्ते आउंदा ते गुरमुख प्यारे उस गुरसिख भावना दे नाल जदों बाबा अटल राय जी दे अस्थान ते जाके नमस्कार करदा भावना दे नाल ते उन्हां दी यात्रा धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी पूरी करदे ने। अज बाबा अटल राय जी दा ज्योति जोत समाउण दा भी दिवस है। सो आओ धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो हुक्मनामा साहब बख्शिश कीता है उस पावन पवित्र हुक्मनामा साहब दी विचार दे नाल सांझ पाईए। एक बार

0: परमेश्वर वाहिगुरु जेड़ा दाता है जिनू सतगुरु जी ने पावन गुरबाणी के आरंभ के लिखिया एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरु एक है जिनू आपां रोजाना श्री जपजी साहब दे विच पढ़दे हां सवणा जीआं का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। वो इको ही दाता है होर कोई दूजा नहीं है। महाराज कहिंदे उस परमात्मा नू याद कर हर इको दाता सेवी है हर एक तिहाई है हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है जे दूजे पासों मंगी है तां लाज मराई है। कहिंदे कदे भी एक दाते नू छड्ड के किसे दूजे दाते दे कोल नहीं जाना। साडा दाता इको ही आ ओ तो बिना होर कोई नहीं है। सभना जीआं का एक दाता ते गुरमुख प्यारे गुरु दे दर ते आके ए अरदास करनी आ भी सच्चे पातशाह ना विसरी ना विसारी ना भुली ना भुलाई सतगुरु सानू आपदे बना के रखी ते ए बचन आपां सतगुरां दे पावन बाणी दे पढ़दे आं विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। मेरे मन दे विच चा पैदा कर दी सच्चे पातशाह मैनू कदे भी तेरा नाम ना भुले। ते आपां नूं सतगुरु जी अज दे हुक्मनामा साहब दे विच बचन करदे ने सतगुरु पातशाह महाराज जी कहिंदे ने ओ परमेश्वर जिहड़ा दाता है मन होना बीसरै ओ कदे भी परमेश्वर वाहिगुरु मैनू ना भुले।
1: कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरा
0: एक कड़ी मात्र एक मोहत एक चसा मात्र भी ओ परमेश्वर वाहिगुरु तो बिना साडा सरदा नहीं है क्योंकि ओ परमेश्वर वाहिगुरु ही सानू स्वास दे रहा है। आ जिंद जिहड़ी आ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਪਲ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਚਸਾ ਮਾਤਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੇ

0: इज्जत ओ परमेश्वर वाहिगुरु आप रखदा है, जिस पत रखै आप, जिनू उन्हें रखना है। ते गुरमुख प्यारिओ, ओ तां वड्डे वड्डे प्यारियां दी, वड्डे वड्डे भगतां दी, ते जदों भी उन्हां नू याद कीता ते ओ परमेश्वर वाहिगुरु जी ने उन्हां दी रख्या कीती आ। हर युग दे विच अपने प्यारियां दी पैज रखी आ, हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखस दुष्ट हर मारिया, हर आप तराया। ते गुरमुख प्यारे, ओ परमेश्वर वाहिगुरु अपने प्यारियां दी पत इज्जत रखदा है। गुरु पातशाह जी वचन करदे ने, अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठतावै, सेवक कौ निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होयावै। ओ परमेश्वर नूं जदों कोई याद करदा, ओ अपने प्यारियां दी भगतां दी पत इज्जत गुरमुख प्यारे आप रखदा है। जिस पत रखै आप, सो भवजल तरै, जिहदी पत इज्जत परमेश्वर ने रखी आ, ते ओही भैदायक संसार रूपी समुंदर तों तर जांदा है।
1: भगत ज्ञानी तबा जिस कृपा करै,
0: ओ परमेश्वर वाहिगुरु जिहदे उपर आप कृपा करदा है, ते उहनां नूं गुरमुख प्यारिओ भगत बना दिंदा है, उन्हां नूं भगती दे वल नूं ला दिंदा है। जिहदे ते ओ आप कृपा करदा है, ओनू ही ज्ञान बख्श के ज्ञानी बना दिंदा है, ते जिहदे ते ओ आप कृपा करदा, ओ तो ही अपना नाम जपा करके ओनू तपस्वी तपा बना दिंदा है। ते ओदी कृपा तो बिना भगती नहीं कीती जा सकती, ओदी कृपा तो बिना ज्ञान दी प्राप्ति नहीं हुंदी, ते ओदी कृपा तो बिना परमेश्वर दा नाम नहीं जपया जांदा। जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी कृपा हुंदी आ, फिर ही भगती हुंदी आ, फिर ही ज्ञानवान पुरश हुंदा, ते फिर ही तपस्या करदा है। ओ आप ही भगत बनाउंदा, आप ही ज्ञानी बनाउंदा, आप ही तपे तपीसर परमात्मा दा नाम जपण वाले बनाउंदा। ते गुरमुख प्यारे, ताप गुर सेवा तपा सिर तप सार, गुरु दी सेवा सब तो वड्डा तप है। गुरु दे दर ते कीती हुई सेवा जदों भावना दे नाल करदा, ते गुरु दे दर ते प्रवान हुंदी है, इह सब तो वड्डा तप है। इस करके सतगुरु जी आप ही कृपा करके करवाउंदे हन।
1: सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै,
0: जिहदे उपर परमेश्वर वाहिगुरु आप बल बख्शिश करदा है। सो पूरा प्रधान, ओ पूरा प्रधान श्रेष्ठ मनुख हुंदा है। ते पूरे प्रधान कौन आ? गुरु साहब जी बाणी विच कहिंदे ने, पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मत्था, जेड़े गुरु दे चरणां दे विच आ करके सीस नवाउंदे ने। सतगुरु जी कहिंदे ओ पूरे प्रधान ने, ओ श्रेष्ठ पुरस ने, ओ चंगे पुरस ने। सो पूरा प्रधान जिसनों बल धरै, जिहदे उपर ओ आप बल बख्शिश रहमत करदा है,

0: अनुग्रह तो भाव गुरु ने कृपा की है, जिदे उपर परमेसर वाहिगुरु आप कृपा करदा, ओदे मन दे विच कदे भी किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हुंदा, जिदे ते उन्हें कृपा कर दिती। अपने ते किड्डी कृपा की आ, आपां कई बारी किसी नूं कहने आ तू भाई अमृत छकला नाम जपला गुरु घर आया कर, अगों जवाब मिलता जी जदों मेरे ते कृपा होगी मैं जप लूंगा। पर नहीं भाई, परमात्मा ने बहुत वड्डी कृपा की है। देखो सब तो वड्डी कृपा अपने ते वाहिगुरु ने की, मनुखा जीवन मिल गया। आ मनुखा जीवन यह बहुत वड्डी कृपा है। ते गुरमुख प्यारे पंजाब की धरती ते जन्म मिलिया किड्डी कृपा है। सिखा दे घर दे विच जन्म मिल गया किड्डी कृपा है। ते गुरु साहब ने तुरकी बाणी का खजाना बख्शिश कर दिता किड्डी कृपा है। यह सतगुरु की कृपा है। ते गुरु ने तेरे ते कृपा बहुत कर दिती, पर प्यारिया हुण तू अपने आप ते आप कृपा कर। तू गुरु की शरण विच आना शुरू कर दे, गुरु के चरणों के विच आ, ते सतगुरु दीआं रहमतां हुंदीआं ने। कर अनुग्रह आप राख्यो, वाहिगुरु की जदों कृपा हुंदी आ ओ प्यारिआं नूं अपनिआं नूं आप रखदा, ते उहनां दे मन दे विच कोई भी विकार जिहड़ा है ओ भाई नहीं पैदा हुंदा।
1: जिस प्राप्त होए सिमर तिस दहत नह संसार।
0: जिनू वाहिगुरु परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाता है, वह वाहिगुरु के नाम नूं सिमरता है, वह गुरमुख प्यारे जिहड़ा दहत विकारां दी अग दे विच संसार दे विच ओ नहीं सड़दा।
1: सुख मंगल आनंद हर हर प्रभु चरण अमृत सार।
0: ओदे घर दे विच सुख मंगल खुशियां आनंद दे सहित हो जांदा है। कौन? जेड़ा भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां दे नाल, जेड़ा सानू मृत्यु तो रहत करन वाला परमेसर वाहिगुरु दा नाम है। गुरु दे चरण, गुरु दे चरण केड़े ने? गुरु दा शब्द, परमात्मा दा नाम। ते गुरमुख प्यारो इनू हिरदे दे विच वसाउणा है। जिने गुरु दे चरणा नूं गुरु दे शब्द नूं हिरदे दे विच वसा लिया, ते सतगुरु जी कहिंदे उहदा जीवन आनंदमय सुख दे सहित खुशियां दे सहित हो जांदा।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट कैलगरी, नियर स्टैंपेड ग्राउंड।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: धारा के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 है ये कहां से छपा है ये वेद? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। इन्होंने यहाँ लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, लेकिन ये दानंद जी का अनुवादित नहीं है, दानंद जी ने अनुवाद नहीं कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। चलो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है, अनुवाद किया है ये, इसमें मूल संस्कृत है, ये सारी मूल संस्कृत है। इसमें ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोलन लागे, वह को हम वह बोलते हैं, ये कबीर। यहां देखो इनके द्वारा अनुवाद है, ये किसी और ने किया हुआ अनुवाद। यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि भगवान परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहां हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके, उसको हल्का करके यहां आता है अपने रूप को, इसे सिद्ध कि साकार है भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने क्या किया है, इसमें यू हलंत वाला रह जाता है, अत्यो अलग कर देते हैं, ये अत्यो कबीर अत्यो, रह छोटा हो जाता है, तो उस रह को इन्होंने यहां दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया, तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता, तो हम इसको, हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव, वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकतेजों में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर यानी वो तीसरे स्थान पर ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है,

आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वह श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता आकर के। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आप देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता है कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है, जैसे पहले, अभी वही स्वभाव है लेकिन अब काशी धातु रही नहीं, पहले काशी धातु के बेले थाली होया करते थे, परांत भी बेले थाली ज्यादा होते थे, और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, उनके लिए आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले, उनको ही ज्यादा वो ही समझ सके उनको, बाकी वो टोड़ गिल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह बिना समझ सके। और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य, और वह बिना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का। तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं, जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है। उद्देश्य क्या है उसका आने का, परमात्मा का? अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य, ये कबीर इस रहा ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटा कर रह। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है और इसको ये रह हटा करके दो अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है महर्षि दयानंद, इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है 40 के 40 अध्याय, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर अध्याय में ये स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय, इसमें यहां लिखा है रिचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटा के, जैसे इस पर यहां लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रह हटा के और यहां अपसर्ग लगा दी 36 में जाएगी प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है। जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रह लाना पड़ेगा, तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर रह हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रह ऊपर लाना पड़ेगा,
तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर कबीर साहब देव।

ने परमात्मा, तो ऐसे अब बरस हो गया इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहां आते हैं, और इसी का यथार्थ ये वास्तव में यथार्थ नाम भी मालिक का यही है। जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है, ये उपमात्मक नाम उपाधि के नाम। तो अब यहां कबीर देव को समझने में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना होगे। ये देखिएगा अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर 82 का इब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है कबीर वेदस्य, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे अध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते हैं अपनी वाणी में, पहुंचूंगा छन्ने एक मजन अपने के हेत एक सन में, और आप इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया। हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव है, कबीर देव कबीर साहब, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का, तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूर्ण करके कबीर देव, वो कबीर अगर इसी दीपसोदी हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे, और हम उसको कबीर देव कहने लगे कबीर साहब, वो कबीर साहब हैं, आप कबीर हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, ये उसको कवि कहते हैं जो व्याकरण के मास्टर मानते अपने आपको, वो कहते हो तो कवि है, तो आप ये सोच रहे वो कवि साहब है, हम उसको कबीर साहब कह दे, बोलन का अंतर है, वो वही परमात्मा है जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं, जो काशी में आया था जुल्हा रूप में, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब तीसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप सर्वव्यापक नहीं आप है, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा, भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है, उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से परिचित होने के उपरांत आपकी जो श्रद्धा हमारे अंदर रह जाएगी अन्य भगवानों में रह जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी साधन तालाबों से ही हुआ करते थे, जैसे सिंचाई भी तालाब से, पानी पीना भी, पशुओं को पियाना भी तालाब से ही होता था, तो इस प्रकार उसमें वर्षा हो जाए तो वो तालाब छोटा तालाब जलाशय होता था, वो भर जाता था, और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है, और उस पर आधारित प्राणी भी
संकट में पड़ जाते हैं, उनकी भी जान चली जाती है, प्यासे मर जाती है। और उन प्राणियों को फिर बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए, जो 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो उसका। तो कहा कि उसके पश्चात उन प्राणियों की आस्था श्रद्धा जितनी उस छोटे जलाशय में रह जाएगी, उसकी बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत ऐसे ही तेरी श्रद्धा उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत, उसके ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत छोटे अन्य देवताओं में, भगवानों में ऐसे तेरी श्रद्धा रह जाएगी। अपने आत्मा उस छोटे जलाशय में जो आश्रित थे, वो जल बुरा नहीं था लेकिन वो अपर्याप्त था, उसकी अक्षमता बहुत कम थी। इसी प्रकार हम जिन भगवानों की साधना करा करते, वो बुरे नहीं थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे। और अब हमने पूर्ण परमात्मा मिल गया, जलाशय मिल गया, कौन ऐसा नालायक से जो पाचन रहेगा। अब कोई एमएलए है और उसने कोई मुख्यमंत्री बनाता हो, समझ गई बात, इतना संकेत बतेरा, तो हमने जो उपलब्धि हो तो हम पाछे कैसे पीछे रहेंगे। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आप जी की श्रद्धा अन्य भगवानों में आप बैठ जाएगी, वो बुरे नहीं लगते लेकिन वो मारे काम के कोने, हमने जो वस्तु चाहिए उनके पास है नहीं। तो ये ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। अब वो सच्चिदानंद गण की वाणी सुनाएंगे आपको थोड़ी। अब जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा के कलियों के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और कितने वेदों में दुर्गा की पूजा प्रावधान नहीं, इसे से था उनमें वेद का ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो पाया। ओम नाम का जाप वो जप जपा के छोड़ छाड़ दिया, फिर अपना जंतर मंत्र, क्योंकि देवी की उपासना का एक मंत्र हमने आपको दे रखा है, केवल उस एक मंत्र से कई वर्षों तक उसका जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, जिससे उनको उन सिद्धियों के आधार पर वो अन्य जनता से फिर धन इकट्ठा कर लेते थे, उन सिद्धियां दिखा उन, वो यहां तक सीमित हो गए। फिर पुणात्माओं आप जी को जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरे निष्कर्ष यानी यथार्थ मंत्र हैं, जो प्रथम मंत्र है, तो आप जी ने इसमें एक का किसी का जाप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने वैद्य ने एक चूर्ण बना रखा है और उस चूर्ण के अंदर उसने हर तरह की दवाइयां मिक्स कर रखी है, 2 तोड़े फलाने चीज, 2 तोड़े वो, 2, और उसमें से एक ने कोई खावे तो दवाई का काम ना करे वो रानी कर देगी, थोड़ा बहुत चाहे लाभ भी कर दो लेकिन वो रोग ना कटे, तो सभी को मिलाकर खाने से वो रोग नाशक होगी। तो इसी प्रकार वेद ने जो दवाई दी वो सही होती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा सचिदानंद घन की वाणी, काछे भेक कहां वे भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी, नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता, अजरी बजरी करे बियाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जान्या, धोती नेती नोड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा, गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरिया, सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई, पांचों मुद्रा करे बियाना, जासे भेद अगोचर जान्या, 84 आसन बस कीने, अनरागी नी तत्न चीने, काम धेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आसा, काम धेनु दो पियो साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगादु, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली, 4th सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बहुर ना होई, मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं, अक्षरधाम की डोरी सूची, 16 संखी रामत ऊंची, मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना, सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द गुरमाए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं।
सच्चा ज्ञान देने वाले, क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु यहां लिखा है सचिदानंद गण की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना भेद बताया, फिर आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने आगे ये अमरवाणी डीपीबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा है दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक में, सुन मंडल में सतलोक है, सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर वो तीन चार लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा, और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जल जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सचिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा, सुन मंडल सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है रहने की जगह है, बसेरा माने रहने का स्थान, और बहुर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर जल में ले जाई, अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भव जल आण उबारे। लख 84 बंधन तोड़े, अनरागी से चश्मा जोड़े, शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है, यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है वही हमारे वेद बता रहे हैं, और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी, सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई, तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए, सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा, जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी, जहां राम रहीम करीम न कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई, खुद खुदाई जाना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई, नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही, कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण न पंडित काजी, धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकथ कहानी, जहां जीवन सीवन सुरत नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता, बेगम पुरा ब्रह्मगत आदु, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग कहां बांडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं, और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। धोती ने तीनोड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा, सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। धोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरु आई कचेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गजकर्णी होती है कि जैसे पानी पीकर 2-3-4 गिलास मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गजकर्मी गुरु आई चेरा, और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं, और जैसे नाभि कमल है, पेट के अंदर नाभि कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं, वो पेट को घुमा घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं, केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गजकर्मी गुरु आई चेहरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी
टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे मुंह घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूं तक तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी, फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे मैं और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में उससे वो भी साफ हो जाए, बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना, सटकर्म बंधन है भाई, चोला पाक लगे ना काई। ये सटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना, चौरासी आसन बस कीने, अनरागी नीतत न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सबने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है तो उसका क्या बनता है, यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, पांचों मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ये दास इस क्रोथाकांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक चार कोठड़ियां थी जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला बिल्ली का बच्चा, और वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यू खड़ा हो जाता, कभी खड़ा और उसके पैर लगा के ऊपर और न पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, पूरे रूप से नो पेट लगा के न पूरा और फिर उतरता, फिर दो तीन बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था, ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है और सुचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति हमारे छोटे से अंत थोड़ा फ्रेश होकर के जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाए। इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज्यादा करते थे तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, तीन सुन में जम की जाड़ी आसन योग नाम बिन खाली। अब तीन सुन, इन तीन सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्म लोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान सुन है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी सुन। और चौथी सुन है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, तीन सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघे जन कोई आवागमन बौर न होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी आप मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनका कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी ने, श्रीमद् भगवद गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है। उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बने, तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे बहुविध धुंधु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तरबीता वेद पुराण बट पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है, सट दर्शन सट भेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो, कहते हैं 6 प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के इनकी विधि है, सट भेख कहावे हैं। और इनकी साधना देखें धूम धूमधार मचा रहे हैं, कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निराहार रहता है, कोई एक पैर ठाकर गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना करा। नो दिखा आम आदमी ने भाई तो ढूंढा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डले ढो रहे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें सट दर्शन सट भेख कहा में बहुविध धुंधु धार मचा में, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़े तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार फिर ये डले ढो है, उसने वेद समझे को ना, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराण। 18 अर्दड़ को अंधे पत्ते खोआवा, भूल गया सृजन हारा। वेद पढ़े और वेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। ये भी वेदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझाने, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। 4 संपदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये 4 संप्रदायें बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकता। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो तो ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं। ये परमात्मा की वाणी बता रही है, उससे पहले आप जी को श्रीमद देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6 सकंद में। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, बता। तो वही यहां परमात्मा कह रहे हैं ये माड़ा गाल हुए हैं मुक्ता, माड़ा गाला करते जे गली में। अब ये माड़ा गले में डालने की बीमारी कहां से शुरू हुई, पहले क्या था, इतम ये अप टू डेट बाबू जी बनकर पेंट सेंट पह रहा, गोज भी कोई किलवा लेते जेब, पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर पे, धोती बांध लेते और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे, जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है, तो वो जाप करते इतने जाप करते फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि, और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे ओम नाम का जाप करते थे, उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी, वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे उनको लाभ हो जाता था, किसी कोई उनको खाना खिला देता वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ वो बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की बनगी भावना की जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लगे, गांव में आजा सब आज मारा रोटी खाइयो जी, आज मारा खाइयो जी, है तो वो नो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है, तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरने लग गए। अच्छा फिर कोई दो दो डालने लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा बोड़ी आत्मा होया करती सब डालो, उन्हें सोचा दोनों आत्मा भक्ति करता होगा, यो गणा भगत, और दो चार चार गालन लाए गए वो और गणे भगत मान लिए उनकी पूजा कर लगे। तो ये कहते हैं परमात्मा कि माड़ा घाल हुए हैं मुक्ता, ये माड़ा गल में गालने से अपने आप को मुक्त समझते हो, नहीं, और सट दल बाई बकदा, इन सट दला में ये 4 संप्रदाय कौन सी है, 4 शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन 4 शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपने ईव, अब आवे पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने 6 प्रकार के जो भेख बना रखे हैं ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये वैरागी बने फिरे कहते इनको वैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये दुंदु धार मचावे हैं। अब यहां क्या बताते हैं कि वैरागी बन गया बैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तो छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली। जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है कि मेरे मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने, भक्ति में बाधक जान के, अरे ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नारी तेरे साथ रे, इनने त्याग, इनने चाहे तो तू घर में रह के त्याग और चाहे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र है, उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी, आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक है, वो तने मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तो पृथ्वी पर घूमते हो, ऊपर के लोकों में भी चला जाता था तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला, उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नी चोट निशाने, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। बारह बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सठ दर्शनों में सिन्यासी गिरी पुरी नागा उगड़ और ये नाथ कनपाड़े सुखे नाथ, कहते इनमें भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। बारह बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संत से जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया, कहती है सन्यासी जो है ये दस नामी होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहां परमात्मा अपनी वाणी में बता रहे हैं कि ये वैदा है क्या, सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना सन से जावे, किसी का भी शंका समाधान नहीं है, किस कोई भी निरसंशय नहीं है, शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए, और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, ये भी वैदा, सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, चल छिदर की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे, यो भी वैदा है, ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, ब्रह्म कर्म आन उपासनाएं करते हैं, भैरों की पूजा करते हैं और सत शब्द साहिब नहीं सूझे, सच्चा नाम सत शब्द सच्चा नाम सतनाम और सच्चा साहिब परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो समझ में आया नहीं। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम नचीनिया गुण गुरु गुण ही ना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा नगन निरासा तन कुतरासा पशु प्राणी समान समानी यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। अब क्या बताते हैं नगन जो कति निवस्त्र रहते हैं नागा और ये जैनी लोग कहते हैं नगन ये भी निराश जाएंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक को ना। नगन निराशा और तन को त्रासा शरीर को त्रास दे रहे हैं गर्मी सर्दी सहन करते हैं नंगे फिरे प्रभ भगवान ने सोदी दे दी दिमाग दे दिया अपने गर्म कपड़े पहन ले सर्दिया में भक्ति करे पीछा छूटेगा। एक बाबा जी ने बोला मैं अवधूत हूं। अच्छा अवधूत है ठीक है भाई क्या उसने एक एक कपड़ा बांध रखा गोड्या तो ऊपर ऊपर का एक लंगोट और कुछ नहीं ले रखा जनवरी का महीना और वो बैठा रात ने मैं उठा वो छुड़ानी जा करते हम पहले वहां ये काफी आते हैं इस तरह के बनावटी से महात्मा और उसे दिन में बात हुई बोला मैं अवधूत हूँ। अवधूत का अर्थ है बिल्कुल नहीं वस्त्र रहना एक लंगोट और ये कपड़ा लपेट लिया कर पर्दे पे और वो सारी रात बैठा नू को डाडा लागे भक्ति कड़ा होती इस पर और तो उठ के सोए जो और वो बैठा बरंडे में मैं उठा मैं बाबा जी क्या हाल है नू कर ना उसकी जबान खुला मैं मर रहेगा बेटी का बाप फिर चाय लाया बनवा के उसकी खातिर जब तक मुझे आदेश नहीं था नाम लेने का गरम गरम चाय लाया एक गिलास सारी पी गया गट गट मैं बोला कपड़ा वड़ा बोला ना ना ना ना कपड़ा नहीं वो ड्रामा कर रहा उस तरह उसने लोग पसंद करे भाई तो बड़ा दूत आदमी हर कुछ भी नहीं लेता तो भक्ति तो उसका याद रही ना जाडा याद रहा सारी रात सर्दी याद रही भक्ति नहीं हो सकती ऐसी ये बनावटी बातों नगन निराशा तन कुतरासा ये पशु प्राणी समान समानी कहते नंगे अंडो तो जो पशु कुत्तियां जैसे हुए भी नहीं वस्त्र फिरे सारा दिन तो अगले जन्म में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। हाँ अगले जन्म में कुत्ते बना देगा तुमने हांडी फिर वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा कहते हैं वेद पुराण अरे उनके ऊपर कथा कुथा बना दी पढ़ पढ़ भूले पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले इनके अर्थ तुम समझ नहीं सके इसलिए ये सारा जीवन बर्बाद कर दिया। भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी वैदा है व्यर्थ है तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी ताल मंजीरा मन नहीं थीरा बहुविद नाचे नाम न वाचे यथार्थ नाम का जाप नहीं करते और सौ पाखंड करते हैं तपा आकाशी बारह मासी मौनी पीठी पंच अंगीठी यो भी वैदा है बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचों नार पीसों लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब कहते हैं ये वैरागी सन्यासी सेवड़े ये जो है शरीर पर राख लपेट ली माथे पर ला ली नरी मुंह पर ला ली हाथा के लपेट ली कहते हैं ये इस तरह के जो तुम आडंबर किए हुए हो इसे परमात्मा नहीं प्राप्त होता क्योंकि आपके अंदर वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सभी आपके अंदर उत्पात मचा रहे हैं। कंठी माला और मृग छाला सिर पैर जटा रखावे हैं ढोलक ताल झालरी पीटे हैं फिर ताना री री गावे हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु भेंटे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आपने इसको कैसे समझा ये बैदा है गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए मुझे सतगुरु मिल गए कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर मुझे वो मिले थे इसलिए पता चल गया कि ये बैदा है ये व्यर्थ की साधना है। कंठी ये क्या करते हैं जो वैष्णो परंपरा है विष्णु जी के उपासक वो तुलसी की लकड़ी की एक मनिया और एक धागे में बांध कर डालना है गले में उसको कंठी बोले हैं और उसी की परंपरा इस कबीर पंथ में घर कर रही है। वो भी उस कंठी के चपेट रहे हैं और माला गाली गल में। तो यहां बताते हैं कंठी माला और मृगशाला दो सिर पर जटा रखा हुए हैं और ढोलक ताल झालरी पीटे हैं फिर ताना रेरी गावे। यो भी व्यर्थ है। मन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पढ़ावे हैं गुजबी रज का मर्म न जाण्या भद्र भेख बनावे हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं खुद्या कुत्ती गट में दुती फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब घर छोड़ दिया भगवान पाने के लिए उन्होंने घर त्याग कर जंगल में जा बैठा और फिर लगी भूख कड़ाके की फिर चला नगरी में दिए माई हैं। तो परमात्मा कहे फिर घर क्यों छोड़ दिया वो घर पर अपनी बनाई रोटी मिलने थी अपना खा और भजन करे पेट के लिए धंधा भी करता और अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोलना एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट बस बनखंड गुफा बनावे हैं गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो कि मैं वो किसी दिए बनाई होगी वह गर्मी सर्दी ना लगे उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार आवे हैं। वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी का वरना गाद फैलाया के फिर घर किस लिए छोड़ा था। परमेश्वर आए थे कबीर जी उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी रिहर्सल करी थी बताई थी एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो अपना काम भी करे और गणे धन की जरूरत को ना और जब तेरा आठ लाग गए मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति धर्मदान धर्म कर रहे हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का तो ऐसे उसको भी दूर करूंगा मैं जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे ना पत्नी थी ना माँ बाप थे लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले मात पिता नीरू और नीमा और दो मुंह बोले बेटा बेटी जो मुर्दे जिंदे किए थे बालक लड़का और लड़की 12-13 साल के थे तो उनको अपने साथ रखा एक परिवार सा दिखाया खुद कपड़ा बुनते थे उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाही झूठी चिट्ठियां लिख दी 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे झूठा लिख दिया तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो अपना दैनिक कर्म करो लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं फिर तुम्हें मोक्ष होगा। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंह तुरही तुतकारा फिर गागड़ बांग गुटावे हैं। बता अब ये बांग क्यों पीने लगे जंगल में जाने वाले बाहर जो घर त्याग जाते हैं क्यों पहले तो निकले बेचारे परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालु आगे वो नाड़ी संत टकरा गए जो भी जिसका जैसा फिट हो गया उसने उसी रंग में रंग दिया फिर वो भांग इसलिए पिलाते हैं कि कहीं इनके बालक याद ना आ जाए भाग जाए यहां से उन्हें चेले चाहिए मनुष्य उनको व्यर्थ कर जाते हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। काशी गया प्रयाग महोदधि और जगन्नाथ को जावे हैं और लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं कहते ये भी व्यर्थ है। अपुण्य आत्माओं परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण यदि हमें पहले अगर कोई ये बात कहता हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में काशी में प्रयाग में महोदधि में लो अगर पुष्कर आदि जाना व्यर्थ है तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती हम नाराज हो जाते। अरीब हमारे गीसा गल है एक सच बताए रखिए कति वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी डले डोवा थे जीवन खोआ थे अपने बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाने हमने सतगुरु बेटे नो जाने। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है अर्थात जो इन्हीं की साधना इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले दूषित कर्म निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार इकट्ठी चार गाली दी है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्मा एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े वैष्णो ये सभी संत साधु जिनको हम संत कहते हैं साधु कहते हैं ये चले गए वहां नहाने के लिए पर भी में कुंभ के मेले पे और ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं गिरी गिरी वाले ग्रुप में पुरी पुरी वाले ग्रुप में सन्यासी सन्यासी वाले ग्रुप में नागा नागा वाले ग्रुप में और वैष्णो अपने वैष्णो के ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे आगे होता है बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है तो उसमें सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए। उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं हम नी वस्त्र है हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह टट्टी के हाथ भी ना धोते शरीर फिरडो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर अब बताया ना बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचों नार पच्चीसो लड़के धुंधो धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था उसने बजा दी विसल

सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सब किश तो है मेरे प्यारे।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है, 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: ऐसे गुर को

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law to Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Ina to kisi bhi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi bhi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी चौबी घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करा दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले किते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी ले कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.punjabiradio.ca।
2: बरस काना मेरा मन पीना, बरस कना

0: मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गाव करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बह घर बार सब को पूरा आप ही होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे
1: महला पहला वदी सो जग नानका।

0: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो पट भागी लिव लागी मेदन पर सहता ऐ भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोटी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुर मत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समेदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुटा सतवंत हर नाम मंत नव निज नंद खुटा गुर रामदास तन सर्व मैं सहज चंदोया तान्यो गुर अर्जन कल उचरा तेरा जोग रस जाने हो।
1: पै निर्भव मान्यो लाख में लख लखायो अगम गोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सारसो पर परायो गुर गम परमान अजर धरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचरे ते सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर।

अंगद पयो तत् शो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र।

0: मूरत पंच प्रमाण पुरख गोर अर्जुन पिखो नैण।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमगे तेज भुव मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख।

0: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदारन बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो पहो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पापिन नरों के गुर्राम दा जिन पायो छतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो।
2: अजय गंग जल अटले सिख संग सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंश जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो
3: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख।

रहन सुसहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजण सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजण सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी और रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डबता कर कृपा पाखण हम तारी जन्म जन्म के लागे बेख मोरचा लाग संगत साध सवारी जा कंचन बैसंतर ताया मल काटी काटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हम मारी हर हर आगम आगाद बोदा अपरंपर पुरख अपारी जानका कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर आगम आगाद बोदा अपरंपर पुरख अपारी
जान का कृपा करो जग जीवन, जन नानक पाज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी।

महला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे सबको सत समावे ऋग कहे रहया भरपूर राम नाम देवा महसूर नाय लय प्राप्त जाहे नानक तो मुखंत्र पाए जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया।

नानक के सो मिले महला पहला जो जो रू सरनामणी आवे वारो वार झूठे झूठे।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक Rio Banquet Hall दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी Rio Banquet Hall नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। Rio Banquet Hall दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700-403-439-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7700-4039-7

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

उस परमात्मा दा नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर। हे भाई उस वाहिगुरु परिपूर्ण दा नाम सिमर सिमरो सिमर सिमर प्रभ। परमात्मा दा नाम सिमरन करन वाले जिहड़े है वह अकाल पुरख के दर ते परवाने जांदे है, जिहदे विच प्रभ कै सिमरन गर्बना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। रब दे सिमरन करन वाले अकाल पुरख के दर ते परवाने जांदे है। और भगत कबीर साहब जी ने किस परमात्मा का सिमरन किया जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाणी च क्या चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जी की गल की, जिन्हों धन गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब की बाणी विच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद की गल की। निराकार अकाल पुरख के सरूप नूं इन्हां शब्दां विच उन्होंने बयान किया। पर भगत कबीर साहब जी ने उस परमात्मा के नाम की सिमरन की गल

परमात्मा दे नाम नूं सिमरन तों बिना बड़े जीव जिहड़े आ उह डुब गए। इस विकारां दे भवसागर दे विच्चों इको एक शक्ति है, उह है गुरु दा सिमरन, रब दा सिमरन। परमात्मा दा सिमरन करन वाले उस अकाल पुरख दे दर ते परवाने जांदे हन, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार थकीन। और दूजे पासे जिहड़े रब दे गुण नहीं गाते उन्हों का जन्म अकारथ चलिया जाता है। जदों परमात्मा दे सिमरन की गल करिए, भगत कबीर साहब जी दे जीवन विचों ही इतिहास साडियां अखां दे सामने आंदा कि जिहड़े उन्हां दे नगर विच रहण वाले लोग सन, उन्होंने भगत कबीर साहब दे लई मन विच बड़ा दुख जाहर किया, क्योंकि घर विच रोटी खाण लई नहीं है, पहनने लई कोई चंगे कपड़े भी नहीं हन, ते मन विच बड़ा दुखी हो के ईरखा द्वैश दीआं गल्लां करदे आ कि इह फिर भी बड़ा प्रसन्न रहिंदे आ, बड़ा खुश रहिंदे आ, इन्हां दी खुशी दा कारण की है। पर जदों पता लग्या कि यह कोई रब की भगती कर रहे और उन्होंने जिहड़ी रब की भगती की कबीर साहब ने, उस भगती की परख करन दे लई उन्होंने भगत कबीर साहब जी के नाम उत्ते ढंडोरा पटवाया कि इन्हों के नाम उत्ते ढंडोरा पटवावे कि यह बड़ा वड्डा लंगर करन जा रहे आ, जग करन जा रहे आ। ते जदों दुनिया के लोग उस लंगर दे विच शमूलियत कर लई आणगे तो फिर उन्होंने इत्थे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर बड़े गरीब हैं। पर भगत कबीर साहब जी रब का अठे पैर नाम जपण वाले, उन्होंने जदों अकाल पुरख के दर उत्ते सुरत जोड़ी

0: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 124, 4774 ਵੈਸਟ ਵਿੰਸ ਡਰਾਈਵ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-605-6300 ਤੇ, ਯਾਨੀ 403-605-6300 ਤੇ। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इन्हीं की साधना इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले, दूषित कर्म, निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार गाली दी है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्माओं, एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है, वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े वैष्णो ये सभी संत साधु, जिनको हम संत कहते हैं साधु कहते हैं, ये चले गए वहां नहाने के लिए पर्व में कुंभ के मेले पे। और ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं गिरी गिरी वाले ग्रुप में, पुरी पुरी वाले ग्रुप में, सन्यासी सन्यासी वाले ग्रुप में, नागा नागा वाले ग्रुप में और वैष्णो अपने वैष्णो के ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे आगे होता है, बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते। ये बहुत पुराने समय की बात है। तो उसमें सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए, उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नी वस्त्र है, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरीर फिरो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर, अब बताया ना बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचो नार 2500 लड़के धुंधो धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल, वो 500 अड़ंगे भीतर भरे पड़े तुम्हारे, वो तुमने कैसे मोक्ष सुन देंगे, अब क्या करवा दिया, उल्टा मुंह कर लिया नाण की बजाय और लठम लठा। वैष्णो साधु और वो नागा और फिर तो वो विघ्न हो गया। वहां पर कहते हैं 25,000 लगभग 25,000 व्यक्ति वह संत कुआ थे, नागा और वैष्णो आपस में कतलेआम कर दिया वहां पर। नाणा नूणा और भगवान तो गया बाड़ में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी कवे परमात्मा का प्यार भी भूल गए हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, काटे शीश दया भी कोई ना, अरे वो संत कमावे हैं, वो साधु कहलाते हैं। और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे व्यक्तियों को संत मानकर साधु मानकर और जो भोली आत्मा इनके पास जाते हैं, इनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी यही दशा करते हैं, उनको भी नरक भेजते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पी हुए बकरे काट तड़ावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे जावे हैं। कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार से सावन के महीने में, और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चल रहे, गंगा का पानी जल, नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं, और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं, एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जाकत ही नहीं देखे और उसको न्यू कर दे तो तुरंत देखता है, ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड है जो विशेष मंत्र है जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं, वो मंत्र यथार्थ मंत्र है जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं, और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से हरिद्वार से और अपने अपने घर तक आओ, तो उसमें कितने जीवन के पैर तल मरे वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में, और पाया गंगा जल लेकर आम है वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है, और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम बम बम बम, अब न कोई नो कहनी है बम बम का नाम भी बुंडा, और वो मानना इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं, एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे बोली चल आगे, इन नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो अपने कम्यो आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा, तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में कति माइनस जीरो में पहुंच गए। अब इस माइनस जीरो से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा, ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे जावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या, ये दस नामी दया नहीं जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, और पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। कहते हैं ये दस नामी लाल कपड़े पहनकर संत बने फिरे हैं, और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं, ये यो सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज, और ये खुद कहते हैं देवी भागवत के तीसरे स्कंद में कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं, ये चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी कहते ये कूड़े बेख काल का बाणा, ये झूठी साधना करने वाले काल के पुजारी हैं ये, और संतों देख रिसावे हैं, संतों के बारे में जिक्र चल जाए तो दूना दुख मानने हैं, रखो के ले रहे नाराय, परमात्मा कहते हैं ठारा अक्षौणी अक्षय करी चुन कर शिशुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर वही सभी काल के वेख, हे परमात्मा कितना निर्मल ज्ञान दिया है। कहते एक चुनक नाम के ऋषि थे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है 15 तक तो ब्रह्म विष्णु महेश तीनों गुणों की उपासना के बारे में बता दी कि वो साधना करते वो इसी आदमी है, और फिर कहे कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी चार प्रकार के करते अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें से वो तीन रिजेक्टेड है। ये ज्ञानी जो है ये अच्छी आत्मा है, इनको पता लग गया मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाके जो सत्साधना नहीं की तो व्यर्थ है, और केवल एक अन्य उपासना नहीं करनी किसी देवी देवता या व्रत तीर्थ की, केवल एक भगवान की भक्ति करनी है पूर्ण परमात्मा की, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो उनको ये पता लग गया, दृढ़ विश्वास हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है, तो उनको ये तो ज्ञान हो गया। फिर वेदों से स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप और हठ योग ये ही इसका साधन है, जबकि ये ब्रह्म तक काल तक की पूजा थी। तिक्तुणक नाम के ऋषि ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां आ गई। एक मानदाता राजा था, उसके साथ अटपट कर ली, युद्ध कर लिया, और मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास 72 करोड़ सेना थी पूरी पृथ्वी पर, अपने संदेश वाहक भेजकर ये जानकारी प्राप्त की थी कि भी कोई मेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता, यदि कोई मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करता उसने युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर सब जगह घुड़सवार जा रहे थे, आए वापस। चुनक ऋषि ने पूछा भी कहां गए थे, कौन हो तुम, कहां से आए हो। इस एक घोड़ा था वो खाली था बगैर सवारी के, उसके गले में कुछ लिखा हुआ था। तो ऋषि ने पूछा भी ये घोड़ा खाली क्यों छोड़ रखा है, इस पर कोई बैठा क्यों नहीं। तो राजा के सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में ऐसे लिखा हुआ है। हम पूरी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, सभी उनसे डरते हैं। टुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने भी उनका युद्ध नहीं उठा। नहीं, कौन उठे, पता है हमारे राजा के पास 72 सोनी सेना है, जाड़ फोड़ देंगे। अब ऋषि ने सोची भाई अभिमान हो गया, काल प्रेरणा है ये, राजा को सबक सिखाना चाहिए। चुनक ऋषि बोला भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। और वह सैनिक बोले रहा कंगाल तेरे दाने खाण देनी, अरे तू युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है, अपना कर ले भक्ति बोल वाला। टुणुक ऋषि कहने लगा भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी होगी, मैंने तो कह दो और बांध दे घोड़े निया मेरे साथ, क्यों घोड़ा जो पकड़ दे उसने उस ये था जिसने वो घोड़ा पकड़ना पड़ता था। तेरे से बोला मैंने पकड़ लिया तेरे राजा का घोड़ा था, कह दे तेरे राजा ने। उन्होंने जाकर राजा को बता दी। राजा ने सोची आज एक आदमी ने बकवाद करी है, तड़का दूसरा करेगा, सिर उठावेंगे, एक राजनीति होती है चाणक्य नीति। तो राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बनाए, एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ 18 सोनी, और उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले डोए थे उनकी 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियां पुतली बना दी, एक पुतली छोड़ दी उसने 18 करोड़ सेना को, उन्होंने कतलेआम कर दिया सेकंडों में, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी वो एटम बम, कहने का भाव ये है 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस ऋषि ने, इस काल के पुजारी ने 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेख। किसा निर्णय दिया गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को, कैसे निर्णायक तरीके से बताया है कि ये काल की साधना करने वाले ये नाना प्रकार के ग्रुप भेख ये सभी काल के भेख हैं, और दे धारे मौत फिर जोरा माने मौत, दिख है ऋषि और भर रखो बदे, दे धारे मौत फिर ये सभी काल के भेख है। अपनात्मा इसी प्रकार दुर्वासा जी के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक यादव ने आके मजाक कर दिया था, एक लड़के का लड़की का गर्भ का समांग कर दिया है, कढ़ाया बांध के ऊपर का गुदड़े बांध के, और मजाक कर दिया दुर्वासा के साथ कि भी यूं कहें दुर्वासा बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सारी बता देगा इसके पेट में के है। पूछा जाके कि महाराज जी इनका गणे दिन में ताज सूट दया करी है परमात्मा ने, साथ जी के 10-15 साल पाछे इनको गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे, गर्भ में बेटा है क्या बेटी? दुर्वासा ने देखा ये तो बकवाद कर रहे हैं अपना ध्यान से, तो न बोले इससे के उत्पन्न होगा। दुर्वासा ने शराब दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस दिन, बाजार मारूंगा लठ। अब वो भागे, उससे उस शराब दे दिया, उस कढ़ाई से, उसको श्री कृष्ण के बताए अनुसार उस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को चूरा करके जमुना में भी डाल दिया, उसके पठेरा उग गया, घास उग गया सरकंडे से, अंत में यादव उसी सरकंडों से कटके आपस में मर गया, तलवार का काम करने लग गया। तो गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमेश्वर के ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे, दुर्वासा को पेतहा, कोपे माने कुपित हुए, क्रोधित हुए, दुर्वासा को पेतहा समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे व मची रुधिर की कीच। रुधिर माने खून की कीचड़ माच गया, 56 करोड़ यादव ऋषि दुर्वासा के श्राप देने से आपस में लड़के कतलेआम कर डाला। कहते हैं दुर्वासा को पेतहा समझने आई नीच, एक बालक ने मजाक किया था, अरे इतना जुल्म कर दिया, ऐसा श्राप दिया करे। कहते हैं दे धारे जोरा फिरा ये सभी काल के भेख, अरे न मैं ऋषि कहे थे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है, पूर्ण मोक्ष कराना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने इस मनुष्य जीवन के कर्म को, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और ये क्रियाएं उन पशुओं जैसी ही मान रखी थी जो पशु पक्षी सभी करते हैं। बच्चों की उत्पत्ति, उनके अंदर ममता और मोह, उनकी परवरिश कर देना, ये अन्य प्राणियों के अंदर भी जो की तो विद्यमान है, और इतना ही कार्य हम कर रहे थे तो मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या है। तो अब परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा कि इस मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य और है जिसको हमने प्रारंभ भी नहीं किया था, और यदि हम प्रयत्न कर भी रहे थे परमात्मा की साधना का, वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हम काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते थे, ये दुर्गति, ये संकट, ये आपदाएं हमारी कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान दिया, उन पुण्यात्माओं ने अपनी अनुभव की वाणी और परमात्मा को आंखों देखा और परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध करवा दिया। उन पुण्यात्माओं ने, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख दिए कि हमने प्रभु को देखा, हमने परमेश्वर को देखा, और वो परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, हमने वो कैसे मिले, और उस परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दिया, वो सब कुछ अपनी अमृत वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया जो आज हमारे काम आ गया। उन संतों ने, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उनके अनुभव की वाणी और परमेश्वर द्वारा दी गई अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी और वेद और गीता जी, ये सभी एक ही समांतर ज्ञान देते हैं, लेकिन वेदों और गीता में जहां वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान भी सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता, और बीए और एमए का पाठ्यक्रम अन्य रह जाता है, लेकिन बीए और एमए के अंदर मैट्रिक तक के सिलेबस का भी मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के सूक्ष्म वेद दिया, ये चारों वेद पहले विद्यमान थे, तो सूक्ष्म वेद के अंदर चारों वेदों का भी निष्कर्ष, गीता जी का भी निष्कर्ष, पुराणों का भी निष्कर्ष, और साथ में सूक्ष्म वेद तो वो है ही है, आगे की विस्तार से जानकारी उस परमात्मा ने हमें दी। परमात्मा बार बार आकर हमें याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। भाई कोटि जन्म तन बरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कोटि जन्म तोए भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सोकर खर बया बोरे तू कौआ हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। कोटि जन्म तू राजा किन्या मिटी न मन की आसा, कोटि जन्म तू राजा किन्या मिटी न मन की आसा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रसा, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। असंख जन्म तूने मरते होगे जीवित क्यों ना मरे रे, असंख जन्म तोहे मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे, मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रतनागर। चार मुक्ति जा चंपी करती माया हो रही दासी, चार मुक्ति जा चंपी करती माया हो रही दासी।

0: का सागर किसे कहते हैं जहां दुख ना हो? सागर में समुद्र, समुद्र के अंदर जाने के उपरांत 100-150 किलोमीटर जब प्राणी चला जाता है किसी जहाज आदि में बैठकर, उसके बाद समुद्र के अंदर या तो वो जहाज दिखाई देता है या केवल जल ही जल होता है। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल और कुछ नहीं। इसी प्रकार सुख सागर सतलोक वो सुख सागर है जहां दुख नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती, यानी सुख ही सुख है। और यहां 21 ब्रह्मांड के अंदर यहां सुख नाम की चीज नहीं, दुख ही दुख है। तो हम कितने गलत स्थान पर आकर सेट हो गए। हम अपने आप यहां सेटिंग करने की सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं कि यहां मकान बनाऊं बढ़िया 2-3 मंजिल का, फिर मेरे पोते रहेंगे, पर पोते रहेंगे, फिर मेरी पीढ़ी यहां रहेंगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, आग गए ना बावड़े ये रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पहले वाले थे वो भी चले गए, वो दोबारा आकर हमें नहीं बता सके कि हम कहां गए, कैसे दुख पाया हमने। और जो शेष हैं ये भी चले जाएंगे। और बिन उस परमेश्वर कबीर देव जी की भक्ति के, सत भक्ति के, सतलोक वाली साधना के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आप जी ने उस दिन के सत्संग में सुना कि ब्रह्मा विष्णु नारद और व्यास जी और सतियों के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि, उन किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ना उनको वेदों का ज्ञान था। तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से उन्होंने जो लोकवेद ग्रहण किया हुआ था वही हमें दे रखा था। और यदि वेदों अनुसार भी साधना करते हैं तो ओम नाम का जाप है, उससे ब्रह्म लोक की प्राप्ति है। ब्रह्म लोक जाने के बाद भी गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है। ब्रह्म लोक तक गए हुए साधक भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है। पुण्यात्माओं, तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है, विष्णु जी की भी मृत्यु है, शिव जी की भी मृत्यु है। अब ये प्रसंग ऐसा है कि प्रथम बार, क्योंकि अभी इसका प्रकाश सत्ज्ञान का हुआ नहीं है, तो प्रथम बार जब कोई ये सुनता है इस दास के मुख से कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो ये बात गले उतरती नहीं, क्योंकि हमने लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद के आधार से हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सतीति करते हैं, यही सहार करते हैं, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन

बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजीनो 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: उन आत्माओं, एक अंधा अंधेरे में रात के समय लालटेन जगा के चल रहा था। हाथ में लालटेन लिए हुए और सफर में जा रहा था। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे। बच्चों का शोर सुनकर उस ब्लाइंड मैन ने कहा कि बच्चों, जरा ध्यान से चलना, देखकर चलना, मैं अंधा हूं। अब उन बच्चों ने सुना कि भाई ये कोई आदमी कुछ बोल रहा है। जब उन्होंने सुना कि अंधा है और लालटेन ले रहा, अंधा का है और लालटेन लिया आ रहा है, ये क्या चक्कर है? उन बच्चों ने आकर पूछा, बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा, मैं अंधा हूं। बच्चों ने कहा, आप जी ने लालटेन क्यों ले रखी है? आप आंखों वालों के लिए कहीं मुझ अंधे में टक्कर मार दो, अंधेरे में मेरी टूट जा दे, इस लालटेन की रोशनी में मेरे से टल जाओ, तुम साइड पकड़ जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए ले रखा बच्चा मैंने। तो पुण्यात्माओं, ये पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, इनकी इस दास को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस दास को वो सूक्ष्म वेद प्राप्त हो गया था जिसमें इनका सबका समावेश है और निष्कर्ष ज्ञान है, वो कबीर वाणी में, कबीर साहेब की वाणी में, परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी मुझे प्राप्त होगी थी। और उस वाणी का प्राप्त होना भी सुफिशियंट नहीं था, परमेश्वर ने स्वयं ही उस दास को अपना भेद बताया, उस वाणी को समझाया। तो ये जो वेद और पुराण और गीता जी, ये मेरे लिए लालटेन है, उन आंखों वालों के लिए, कहीं वो मेरे से ना खस बैठे, मेरे साथ झगड़ा ना ठान ले, इन सदग्रंथों की रोशनी में इन आंखें देखकर वो साइड पकड़ जाए, वे सच्ची कहे रामपाल झूठ नहीं बोल रहे। और जब तक ये लालटेन ना दिखाऊंगा, जो कहेंगे तो झूठ बोला है, निंदा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठ पटांग कहता है, और ये लालटेन दिखा दूंगा तो उस देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर शरण में आ जाते हैं, वो फिर बाधक नहीं बनते हैं। तो इस बाधा को हटाने का ये एकमात्र ही रास्ता है कि रह रह कर ये ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और ब्रह्म की भी मृत्यु होगी जो इनका पिता है, दुर्गा की भी मृत्यु होगी जो इनकी माता है। तो ऐसे हम कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये दिखाने के लिए लालटेन दिखानी पड़ेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और इनकी माता भी है, इनके पिता भी हैं, श्रीमद देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं और कहते हैं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ। विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सचिची और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हें तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। यदि ये दास ये कहकर के आगे कदम बढ़ा लेता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये लालटेन नहीं दिखाता है, तो कहीं भी ये सीडी क्योंकि बहुत सस्ते रेट में, लागत से भी कम रेट में दे रहे हैं, तो हमारे भक्त किसी को दिखावेंगे तो वो देखे को नहीं आगे। फिर सदग्रंथों को, इनकी जीवनी को आंखों पढ़कर फिर वो विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने के लिए कि ये तो सच्ची बात है, और सच्ची है बुद्धिमान तो फिर मानने भी गा, और इनको आंखों देखकर भी विरोध करता है तो वो अच्छी आत्मा नहीं है। जान बूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में भी ना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे, आंखें देख कर भी नहीं माने, विरोध करता है तो वो दुष्ट इंसान होता है। और परमात्मा खुद कहते हैं कि इसे निकम्मे की तो सपने में भी फिर मिलन ना हो, वो ना मानो चाहे मान। अब जिनके वो फंस चुके हैं, जिन चतुर प्राणियों के वो फंसे पड़े हैं, यानी जिनसे किसी ने 20 वर्ष किसी ने 30 वर्ष नाम लिए होंगे, तो अब वो ये सोचते हैं कि हमारा अब क्या होगा। या कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो औरों को भ्रमित करके खुद छोटी मोटी कोई पोस्ट उस पंथ में प्राप्त किए हुए हैं, वो अपना भला भी नहीं सोचते औरों का, तो वो सोचेंगे कैसे। तो वो चातुर प्राणी बताए हैं जो आंखों देखकर भी नहीं मानते, वो मूड बताए हैं। और जो संत हैं जो बोली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, वो चतुर इंसान बताए हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में कि चातुर प्राणी चोर है क्योंकि वो सच नहीं बता पा रहा, और मूड मुगद है ठोठ, फिर संतों के निकाम के उनके देगड़ जोठ, कि जो जानबूझ कर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, उन चतुर प्राणियों पर ही आश्रित है, फिर भी नहीं आता यहां उपदेश लेने नहीं आ रहा, उसके लिए बताया कि वो चातुर प्राणी तो चोर है, वो नकली संत मीठी बात बनाकर भ्रमित किए हुए है। परमात्मा कहते हैं बीजक की बात आ गए, बीजक ना ही आथ, और पृथ्वी डोबन उतर रहे हुए कह कह मीठी बात। चातुर प्राणी चोर है ये मूड मुगद है ठोठ, और फिर संतों के नहीं काम के उनके देगड़ जोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है जो आंखों देखकर इस इतिहास को भी फिर भी नहीं मानते हैं। तो मूड मुगद वो तो उन चातुर प्राणियों के साथ ही उनको और सख्ती से बांध दे, अर्थात वो वही फंसे रहे पड़े रहे उन्हीं जो गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? श्रीमद देवी भागवत के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, और ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है। अब रह गया पिता की समस्या। अब पिता की समस्या को शिवपुराण करेगा खत्म। अपने आत्माओं, हमने सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े भक्ति वाले रास्ते पर, ये ठीक है कि नहीं। और जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े ये सही है, तो आपका जो भक्ति रूपी सफर है वो निर्बाध हो जाएगा और सफल हो जाओगे। जब तक आप स्वयं ही कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, आपको संतुष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं सत्य है, तो कोई भी डगमग कर देगा। तो इसलिए आप जी को ये ज्ञान कराना अति आवश्यक है। आप बुद्धिमान हो, बालक नहीं हो। आज मानव ने कंप्यूटर बना लिए, ऐसी दूर दूर देखने वाली सूक्ष्मदर्शी बना ली, वायु यान बना लिए, आकाश में सैटेलाइट फिट कर लिए, ये के काम आओगे? अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये कोई ना पावर ढूंढे सैटेलाइट, ना ये कंप्यूटर, ना ये जहाज, टक्कर मार मार के मरा प्राणी भूखे मर के। 2 वर्ष भी वर्षा ना हुई तो गणित 3 वर्ष पकड़ जाएंगे कुछ थोड़े बहुत। तो यहां किसके लिए हम के को बद करने लाएंगे? परमाणु बम बना लिए, अपना नाशकरण की आप तैयारी कर ली, तो हमने सबसे पहले अपने मार्ग को देखना है कि हम ठीक जा रहे हैं या गलत। इसलिए आप जी को ये तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये सत्संग है, इसको सत्संग कहते हैं। ये दो गाने कोई गाजे बैठ कर बज ले रहे, भगवान तेरा काम आऊगा, फिर ढोलक पीटन लग जा, फिर सारंगी बजान लग जा, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये ज्ञान समझ कर फिर सिमरन करना है डट के दिन रात। कहते हैं नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और जब नाचे गाए भगवान मिले फिर कौन दो आगण हो। रोने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जैसे परमात्मा की चर्चा चलेगी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, तो समझ लिए कि आप की भक्ति बहुत ही स्वस्थ है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। परमात्मा की प्राप्ति उसके अंदर प्रेम होने से होगी, और प्रेम बनाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं, जो ज्ञान बताया जा रहा है। अब किसी वस्तु के अंदर हमारी जो चाह बनती है उसके गुणों से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उसके गुणों का पता है, तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, धन जोड़ता है, लोन लेता है, कुछ भी करता है, तो उसको लेकर छोड़ पार बस आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने इस पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और होगा, तो तभी हम इसकी चाह करेंगे, और फिर इसमें एक विशेष प्रेम पैदा होगा, क्योंकि हम सतलोक में रहा करते अपने पिता के पास, और वह हमें कोई दुख नहीं था। हम अपनी नालायक कीते यहां काल का फंस गए, और अब हमने वहां जाना है जहां से हम अपने पिता के साथ से बिछुड़ कर आए, हमने भारी गलती कर रखी है, और घने बिछड़े हुए ने कोई अपना पिता फिर मिल जाए। बालक ने भादौड़ के सीने के लग जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बिच में झाई कर्म की ही ताते कहिए दूर। आत्मा और परमात्मा का के बीच में हमारे कर्मों की दीवार बन गई, ये बीच में झाई बन गई, एक बहुत बड़ी बीच के अंदर बाधा बन गया। तो इस बाधा को कैसे हटाया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल कैसे हटते हैं, हवा उनको तेज हवा उनको फेंक देती है इधर उधर, और सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आत्म और परमात्मा एक है नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। उसके लिए उस झाई को हटाने के लिए क्या बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर जल के तेज नयारे। तो उस परमात्मा में एक प्यार बनेगी, कसक बनेगी, कुछ दिनों के बाद फिर आंखों से आंसू भी बंद हो जाएंगी, और ऐसे स्थिति हो जाएगी जिसको उन्मन मुद्रा बोलते हैं। नौका तेरा ऐसा क्या हो गया, तू उन्मन सा बैठा है, उन्मन सा यानी ना बोलता, ना ढंग से हंसता, ना कोई विशेष रुचि किसी वस्तु में। तो उसमें आपको ये समझ ले कि तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा चुका है। जैसे नानक साहेब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी प्रसन्न दिखाई नहीं देते, खोए खोए से रहते हो, कभी खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहेब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढड़ जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानो केड़ा हासा। कि यहां किसके ऊपर प्रसन्न हो, ना जाने काल एक पल में के बिजली गिर दे, के जुलम कर दे, पूरा परिवार नाश कर दे, कि ना जाने कितना उदमस्तार दे, और हमें अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है, फिर दिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासा वे। नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते। तो श्री नानक साहब जी ने कहा संत जी ने, कि भाई खुश होता हूं, जैसे सत्संग में प्रेमी भक्त आते हैं प्यारी आत्माएं, तो संत यानी गुरुजी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे जो के तू आ गए, इनके कोई कीड़ा ना लग गया, किसी ने इनको भ्रमित नहीं किया, काल ने कोई अटैक करके इनको खोया नहीं हमारे से, ये परमात्मा के बच्चे सुरक्षित हैं। आप जी जाते हो यहां से सत्संग सुनकर, तो चिंता बन जाती है कि कहीं कोई काल का दूत इन पुण्य आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी साधी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब ये भक्त संत मेरे साथ आते हैं वापस, साध मिले साड़ी साधी होंदी, तो ये समागम होता है, ये हमारी खुशी है। और जब ये जाते हैं तो दिल में दिलगीरी हो जाती है, चिंता बन जाती है, ये डर रहता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्माओं को काल के दूत बर्बाद ना कर दे। और जब ये जोंके तो आ जाते हैं तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो यहां परमात्मा यही याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जरा सी भी चर्चा परमात्मा की शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी आंसू भी बंद हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे यहां संसार असार सा नजर आओगा, किसी चीज में रुचि सी ना रोएगी, वो रोना होता है, वो कसक है न्यारी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, रो बल घट जावे, आंसू तो भगवान मिले नहीं, रो तो बल घट जा, आठ पैर का दाजना जैसे घुण काट ने खा। कहते हैं लास्ट सतीथी ऐसी आ जाएगी। कबीर परमेश्वर जी उदाहरण देते हैं, कबीर वैद बुलाई या पकड़ के देखी बा, और वैद न बेदन जान ही मेरा करक कलेजे मां। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है, उसकी ऐसी सतीथी हो जाती है, घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना त्यु गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी वी सी करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पहनने की रुचि न रही नहीं। तो घर वाले नो सोचे है कदे बच्चे के कोई गुप्त बीमारी होगी हो। कबीर बैद बुलाई या पकड़ के देखी बा, और बैद ना बेदन जान ही मेरा करक कलेजे मां। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना त्यु गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी वी सी करे है। तो डॉक्टर बुलाते हैं, पहले वैद होते थे नाड़िया, वो नाड़ी देखकर बांह पकड़कर चेक करते थे इसको क्या तकलीफ है। तो परमेश्वर जी अपने ऊपर ही अप आरती अप साज अप किंगर अप वज अप ताल झां जनकारा आप नचे आप देखना, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं अप मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर घरवाला ने वैद बुलाया और पकड़ के देखी बांह, और वैद ना बेदन जान ही मेरा करक कलेजे में, वैद मेरे दर्द को पहचान नहीं सका, मेरे तो कलेजे में करक हो रही है उस परमात्मा के लिए। तो पुण्यात्मा इसलिए आप जी को इतना तैयार किया जाएगा, जो आज दास प्रयत्न कर रहा है, आप कोई सदगुण दिखा रहा है, ज्ञान सुना रहा है, ये अभी तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई मिठास सी नहीं है, इसमें इतनी मिठास हो जाएगी लास्ट में, या मिठास बने इसतेंगी, फिर इतना आनंद आओगा फिर आपको जो परमात्मा के विचार सुनाया करेंगे, स्वाभाविक भी बीच में सत्संग हम सुनाते हैं वैसे सिंपल से, तो फिर इन सदग्रंथों के परिचित होने के उपरांत फिर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। और अभी तो आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, जो पुराने भक्त हैं उनको बहुत कसक शुरू हो जाती है, वो कसक तभी होती है जब आप ये परिचित हो कि जो संत वर्बली जो कह रहे हैं सच्ची से, और जो दास पहले बताया कि ये कह दे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, आपको प्रमाण ना दे रखे हो, तो मेरे द्वारा वो दिया गया जो ज्ञान इस दास के द्वारा आपके लिए व्यर्थ होगा और दूना दुख होगा हृदय में, हकीता गे नास्तिक दो रहे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ऐसे बता रहे, तो वो मिठास बनेगी फिर बाद में इस सत्य से परिचित होने के उपरांत। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है ये सिद्ध करने की। ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान प्रकाशक मुद्रक। इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 98 के लास्ट से शुरू करेंगे, और ये है रुद्र संहिता 98 के लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, अंत हुआ रुद्र संहिता का, और छठा प्रारंभ हुआ अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि, उस समय तत् सद ब्रह्म, अपने आत्मा ध्यान से देखना, कहते हैं सच्चाई चोर चुरावे तुम्बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह उपराव न सच्चाई छनी न। यहां क्या लिखा है कि उस समय ये तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। यानी तत् सद ब्रह्म, सद माने सत ब्रह्म, सत माने अविनाशी परमात्मा, उसमें केवल सतपुरुष ही था, एकमात्र शेष था। अब ये मिलते बात तो शुरू करें हैं वहां से, और आखिर में ये फेस हो जाते हैं। अब ये है 100 नंबर 98-99 का हमने निष्कर्ष ले दिया, और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहां परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी इस प्रकार विलप किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं, और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, यहां परम ब्रह्म है वो परब्रह्म है, इसमें बहुत अंतर है। इस परब्रह्म में और परम ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसकी मूर्ति अब ये क्या ला के छोड़ता है, उस परम ब्रह्म यु काल को बता रहा है ब्रह्मा। परम ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म, भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया। तो आप जी को दास ने सृष्टि इतना सुनाई है, उसमें बताया था कि उस काल के अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी, और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने, परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय का कि रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जो उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति के द्वारा कहा है। प्रकृति भी कहते हैं सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी को उत्पन्न करने वाली जन्म देने वाली त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है, और आगे देखना ही क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था और चौथी वह अलग रह गई थी। तो ये एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे न काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, तो उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये सब साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है, वह मनोरम क्षेत्र, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते इसको। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पर गणा नहीं पड़े, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म।
2: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
3: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: गुरदर्शन देख निहाली

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड।

ਪਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਸਭ ਕੋਈ ਕੇ ਬੜ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿਰ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮੇਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮੇਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵੜਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਾਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਸਿਧਾਂ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਆ ਵੜਿਆਈ ਆ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਈ ਆ ਕਰਮ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਿਫਤੀ ਭਰੀ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਸ ਕਿਆ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚ ਨਾਓ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁੱਖ ਤਭੁੱਖ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਤਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲਕ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁੱਕਾ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹੋਈ ਜੇ ਵੜੇ ਆਪ ਤੇ ਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਵਾਚ ਸੁਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਬਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਦ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਰੀ ਮਨ ਚਿਤਵਹ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੋ ਪਾਈ ਤਾ ਕਰਜਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਬਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰਜ ਕਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੀ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਉਡੇ ਉਡਾਵੈ ਸੈਕੋ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ
ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पर वरिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पर वरिया। राग असम महला चौथा, सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा गमे पारा, सब त्याव है सब त्याव है तद जी, हर सच्चे सर्जन हर, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार, हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारन हार, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख समान, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे जोज बनान, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हां तद मन अवर न जान, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखान, जो सेवह जो सेवह तद जी, जन नानक तन कुरबान, हर त्यावहे हर त्यावहे तद जी, से जान जुग मह सुख वासी, से मुकत भये जन हर त्याया जी, तन तूटी जम की फासी, जन नर पाओ जन हर नर पाओ त्याया जी, तन का पाओ सब गवासी, जन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जन हर त्याया जी, जन नानक तन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंत आए, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंत आए, तेरी अनक रहे हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंत आए, तेरी अनेक पढ़े व सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंत आए, से भगत भले जन नानक जी, दो भाव ही मेरे हर भगवंत आए, तू आद पुरख परंबर करता जी, तुद जे बड़े अवरना कोई, तू जग जग एक सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरता जी, तू आपे करे सो होई, तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के दी, जो सब सका जान होई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हम पाई रहा, सब तेरी तू सब नी त्याया, जिसनु कृपा करे तन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुकवाया, तुद आप बिछोड़े आप मिलाया, तू दरिया सब तुझे माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी दंद सब तेरा खेल, बेजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख बखाना, जन हर सेवया तन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होई, तुद बिन दूजा अवर ना कोई, तू कर कर वेख जान है सोई, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरबरड़ा भई निनवासा, पानी पावक तनहि किया, पंकज मोह पग नहीं चाल, हम देखा तह डूबी अले,
मानक न चेत समूर बना हर विसरत तेरे गुण गलियाराओ। ना हों जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मान खुदे हुरिया। गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा किता ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम सुरंग जाम लाग भव जल तरन कै। जन्म मृथा जात रंग माया कैरा। जाप ताप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर लाया। कह नानक हम नीच करमा शरण परे की राख हो शरमा। जाप ताप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कह नानक हम नीच करमा शरण परे की राख हो शरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबा तमकाव हो आप हाथ दा मोह बचाव हो। सुखी वसा मोरो परवारा सेवक सिख सबा करतारा। मोर अच्छा निद करदा करिया सब अरन का वास घरिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें साड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाह सो तुम ते पाऊं। सेख सेख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हादा मुझे वरिया मन काल का त्रास नवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त जो करी अह रच्छा। राख लिहो मुह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम्हो प्री चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव किया वेदराज ब्रह्मा ज्योथी। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत मनाया देव दैंद जच्छन उपजाया। आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवगुण सुख दिया सतरन को पलम बद किया। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना। जावद कर करा करतार प्रजा तरतव दे अपारा। जब या कर करत हो कब हूं तम मैं मिलत दे तरसव हूं। जेते बदन सेठ सब तार आप अपनी बूझो चार। तुम सब ही तेरा तन रालम जानत भेद भेद अरियालम। रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड़ उचारत भेद जाको भेव न पावत भेद। ताको कर पाहन न मानत महामूड़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कैत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव।
आप ही अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भैना भैना तहि चेती। तुमरा लखन जाय पसारा, किहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूप, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जोरज सेतज कीनी, उत्पज खान बहुल रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो संगर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्याम भव। अब रक्षा मेरी तम करो, सिखो बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठ बतत पाता, सकल मलेश करो नन काता। जे अस्त तब सरनी परे, तनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक वार ते है, ताके काल नेक है। रक्षा हुए ताही सब काल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तन कमो हर हो। रद सद कर्म सब होई, दुष्ट स्वस क न कोई। एक वार जिंद मैं संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। निर नाम तिहारो कह, दारद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दल हो उबारी। सर्व ठर मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दल हो उबारी। सर्व ठर मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सोइया पाई गहे जबते तुमरे, तबते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम प्राण कुरान, अनेक है मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब, बह भेद कह मेक न जाने। श्री असपान कृपा।

गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तो पाया सह सेती मन बजियां बधाइया। राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दो तां गाव हो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदर हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सब नंगलना सिमरथ स्वामी सो के मन हम सारे। कह नानक मन मेरे सदर हर नाले, साचे साहेब क्या नाही घर तेरा, घर तेरा सब किश है जिस देस पावे। सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे। का नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुरबान कीता गुरु वेट जिस दिए बड़े आईया। का नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागा, घर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम बाया तुद जनक से नाम हर कै लागे। कह नानक तस खोआ तित घर अनहद बाजे। आन

संतापे उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते दानी। सुनते पुनीत कहते पवता सतगुर रहया पर पूरे। बनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवता सतगुर रहया पर पूरे। बनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तन वस्तु पई सत संतोख विचार। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार। जे को खावा जे को पुंचाए तिसका होए उधार। ये वस्त जी न जाई नित नित राखुर तार। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो।

तोई। मैनर गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर

फतेह बिरद की पाज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रसादान दान सिरदान नाम दान सिर अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाण साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।